0: रेडियो सारंग 107.8 FM।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM। रंग रंग दा बदक इत्ते तुलु प्रसंग।